मेरे मालिक मैं तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा, मन करके तन करके अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया होवा, मन ना जुड़िया होवे ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा तां मन जुड़िया है, तन दी केड़ी लोड़ है, प्यार तां इस तरह कोई नहीं होंदा। जिन्होंने प्यार किया है महाराज उन्हां दी गल करदे, गुरसिखां दी गल करदे ने, भगतां दी गल करदे ने, संतां दी गल करदे ने जिन्होंने प्यार किया, ते प्यार किया ते फिर भरपूर किया। प्यार च अधूरेपन दी की गल, जब भरपूर प्यार करना है ते फिर तनो मनो प्यार करना है। तुसां वेखिया है सुहागना पति नाल मिठा बोलदियां ने ते पति दी प्रसन्नता वास्ते तरह तरह के शिंगार भी करदियां, पति दी प्रसन्नता वास्ते चंगे पकवान भी पकाउंदियां, ते पति थोड़ी देर पछड़ जावे घर आउण तों बौलियां होईयां फिरदियां रहिंदियां ने, मन विच भी प्यार है। शरीर करके भी पति की प्रसन्नता लैण वास्ते प्रयत्नशील है। ते जे कोई कहे मैं तां अंदरों प्यार करदा, बाहरले प्यार की कड़ी लोड़ है, घर बैठा रवे, गुरुद्वारे आउण की थां नहीं, गुंजाइश नहीं, समा नहीं, अधूरा प्यार लैके बैठा होगा अबल तां होना ही कोई। ते एक ऐसा भी हो सकता जिहड़ा गुरुद्वारे आके बैठ गया, मन इत्थे नहीं पिया जुड़दा, मन कितने संतान ते रह गया है, मन कितने मकान ते रह गया।

भगत नू गुरु प्यार वाले नू बिना गुरु के दर्शन ते गुरु के दर्शन दे भी दो अर्थ ने, एक ता दीदार जिहड़ी अखां नाल करने आपां, एक दर्शन संस्कृत च फलसफे नू कहिंदे ने, जो गुरु की फलासफी है जे उहनू नहीं समझिया ते दर्शन सदा अधूरे रह जाण। सतगुर नू सब को देखदा जेता जगत संसार, दिठे मुक्त ना होवे चिचर गुर शब्द ना करे प्यार। गुर शब्द ना करे विचार, जिन्ना चिर गुरु के शब्द दी विचार, गुरु के बचना दा अध्ययन, गुरु के बचना दी कमाई ना कीती, उन्ना चिर केवल आए मथा टेक के तुर गए ता प्यार बढ़ा दूंगा। इस तरह वेखिया गल नहीं बननी, अखां नाल गुरु के सोहने दर्शन दीदारे ते मन नाल गुरु के दर्शन भाव गुरु के फलासफी दी विचार, गुरमत दी विचार चले मन तन करके। इथे महाराज कहंदे ने नहीं रह सकदा गुरु का सिख गुरु के दोहां दर्शना बिना, फलासफी बिना ते देखे बिना गुरु नूं कोई नहीं इहदा गुजारा हुंदा। दासां ने पहावे बिन दरसावे इक खिण धीरज क्यों करे, नाम बिहूणा तन मन हीना जल बिन मछली ज्यों मरे। बंदा तड़फदा फिरदा रह जांदा, गुरु तो टुटिया ईश्वर तो टुटिया होया नाम तो टुटिया होया बंदा मन करके तन करके बेचैनी विच रहिंदा। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੜਫਰੀਏ, ਮਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀ ਮਨ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੜਫਰੀਏ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਪਿਆ ਸੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? और एक दिन ऐसा भी आएगा डॉक्टर कहेंगे गुस्सा ना करया कर, तेरा खाना तेनू कोई नहीं प्यासम हुंदा, तेरा मेदा काम नहीं करता, क्यों? मेदा तो शरीर है, मेदा तो शरीर का केंद्र है, गुस्से का दिमाग च गुस्से का मेदे नाल की तलक है? बहुत वड्डा तलक, क्रोध करने वाला चिंता करने वाला अज नहीं तो कल बहुत वड्डा बीमार हो जाएगा। शरीर ते मन का बड़ा संबंध है, प्यार मन ते तन दोहां तरीकों के नाल पुगदा है, एक तरीके नाल कोई नहीं पुगदा। महाराज कहंदे ने जिहड़े टुट गए ने प्यार तो उन्हां दा मन ते तन दोवें कमजोर बेचैन दुखी रहिंदे ने, नाम बिहूना तन मन हीना जल बिन मछली ज्यों मरे। ते कहिंदे ने मैनू इहो जी मौत इहो जिहा तड़फणा इहो

तेरे गुण इतने हैं, तेरे गुणा नो तू आप ही जानते हैं, तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं, ते मेरे अवगुणा दा भी कोई अंत नहीं। जिन्ना समुद्र विच पानी है, इतने साड़ी विच अवगुण हैं। कृपा कर इन अवगुणा

0: सब स्तुकनु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोठ महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, चरण चलो मार्ग गोविंद। एकेड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी, ओदे गुण गाउणे। ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रसना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है, जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रसना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर रै जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया, उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उहदा परिवार है तां एक पिता एक सके हम बालक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसके बालक हाँ। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जाणगे। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप

चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चरण पखार करम गुर सेवा बार जाओ लखबरिया, जय प्रसाद ए पौजल तरिया जन्नानिक पैसलिया।

हर हर चंद्र देव धारे, हर हर चंद्र देव धारे, शिव स्वामी सदगुर अपना काज सब हमारे, बुंदा पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत विचारे।

मन के नजदीक चला गया। जिवें दो मित्र एक दूजे नाल गल्लां करते हैं कि दुश्मन नूं भी ना आखी जाए। मालिक कोल बैठ के कह रहा, रब तू भी किठा से और बड़ा खतरनाक ठग, शायद दुनियावी ठगां दी जाल विचों कोई निकल जाए, पर तेरा ऐसा जाल है कोई नहीं निकल सकता। वेख न, एक तरफ बाप है एक तरफ पुत्र है, पुत्र जवान होंदे है, दोहां विच तेरी जोत है, वेखदिया पुत्र तुर जांदा है, ते बाप ताई मार के रो पै कहिंदा मेरे जीवन दा की पत, ओ रो रहे ते तू तमाशा वेख, कैसी तेरी ठगी है, स्त्री नू पति लई पति नू स्त्री लई शिकवे हन। कबीर जी कहते हैं

तू मेरे काम लग जा, मैं तेरे काम लग जाना। मैनू तू अपना काम दे दे, मेरा काम तू ले। संसार च ऐसा चल जाता, एक दूसरे के काम आना, जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो। बड़े पुराने समयां तो बंदा काम का लैन देन करता रहे, जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता, जेड़ा कर सकता है उन्हूं जाके बेनती करा तू ये कर दे, इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस। एक दूजे दे काम आ सकी। संसार च भी ऐसा वरते है, पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा किया है कि मेरा काम कर सकेगा, ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मूंह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी, एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउनी है तू वाहू नाल पा के वेख। मालिक तू जो चाहे कर सकना है, तेरी समर्था महान है, करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है। ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास तो हो सकती है। और सच्ची गल जानना, अरदास च खड़े हो जाना ही रब दा काम है। ओदे काम लगन दा मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच। और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण, मस्तक न्यो जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हथ जुड़ जाण दा मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, ये हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन। आप करता पुरख हो, इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, ये हथ बज गए, ये हथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना हो, आदर करना हो, भी हथ बनने। लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हों कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तो यह होंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैन आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने आसी, मत्था टेकने आ पातशाह, इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने ची बड़िया भुलां ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो। मैं तुहाडी अरदास जुड़िया होवां, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, मैं केवल अरदास जुड़िया होवां। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहा तो ये वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै, अपनी भगती नाल मेरे लिए भी एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास लगा होवांगा, हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा। प्रभु का होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं गया, वाहिगुरु का कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा। ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जाए ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारता। एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तां करन तो पहला ही थड़कदा हुंदा, घबराया हुंदा, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंभ के बह जांदा है, पसीने पूंजदा है, सजना मित्रा नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया। बंदा केवल नबेड़ सकदा है, लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कारज सवारदा है। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, उस कारज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा है, सत्कार हुंदा, उस कारज दी वड्डी वड्याई हुंदी,
कारज आया रासे नानक कौ गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे जदों सतगुरु कारज करन आ जावे उसले कारजां च सोभा हुंदी ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ

जिसका सब सुविसाह जिदा सारिया नू विश्वास है, जिदे ते विश्वास कीता जा सकता है, विसाह कीता जा सकता है, जिदी समर्था थोड़ी होवे, शक्ति थोड़ी होवे, ओदे ते काम छड़ के कई बार विश्वसा बनिया रहेगा, डर बनिया रहेगा, तौखला बनिया रहेगा। वाहिगुरु ते भरोसा करने वाले नू विश्वास बजदा है, विश्वसा नहीं रहिंदा, खतरा ते तौखला नहीं रहिंदा। दृढ़ विश्वास वाले बंदे जिसले उत्ते भरोसा करते ने, फिर इस तरह करते ने कि सब सियाणपां छड़ के गुर की चरणी पाह, फिर अपनी सियाणप की गल नहीं करते। मन मेरे सुख सहज सेती जप नाम, सुख तेनू देवेगा, सहज तेरा बनिया रहेगा, तू केवल ओदे नाम विच जुट जा, ओदी भगती च जुट जा। आठ पहर प्रभ ध्याए तू गुण गोबिंद नित गाओ, तू ओदे गुण गाउणा शुरू कर, तू अठे पैर ओदे ध्यान च रहना शुरू कर, ओ तेनू अपने ध्यान च रखेगा। तिसकी शरणी परमना जिस जेवड़ अवर ना कोए, किसे छोटे मोटे दी शरण पैण दी की लोड़ है, तू ओदी शरण पाओ जिदे जिड्डा होर कोई नहीं है, जिदे वर्गी समर्था किसे होर कोल नहीं है। जिस सिमरत सुख होए घणा, जिनू याद करन नाल बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति हो, वाधू सुख की प्राप्ति हो। दुख दर्द ना मूले होए, सदा सदा कर चाकरी, तू ओदी सेवा च लग, प्रभ साहिब सच्चा सोए जो सच्चा मालिक है। साध संगत होए निर्मला, सतसंगियां नाल रल के पवित्र होके निर्मल होके, मलीन बुद्धि नू छड़ के दुरमत नू छड़ के गुरमत दा धारनी बन के, कटिए जम की फास, सुख दाता भय भजनो तिस आ गए कर अरदास, फिर तेरी अरदास करन दी ढिल है ते ओदी रहमत करन च कोई ढिल नहीं। किसने ओ रहमत करेगा, मेहर करे जिस मेहरवान, ता कार्ज आवे रास, जीवन दे सारे कार्ज सौर दे।

रुदन शुरू हो गया। जिथे थोड़ी देर पहला खुशी सी, जिथे थोड़ी देर पहला खेड विच मस्त सी ए मां, बच्चे नू वेख के खुश हो रही सी, उत्थे हुण रुदन हुंदा पिया। विरलाप कीरने पई पा रही है ए मां, आला दुआला कट्ठा हो गया और इस बच्चे नू वेख वेख के जो थोड़ी देर पहला खेड़दा पिया सी ते हुण बिल्कुल इहदे प्राण खत्म ने। सारे ही हैरान हैं। भगत कबीर जी इस घटना नू वेख के कहंदे ने, ए भोली मां, ए तां सोचदी है कि मेरा बच्चा हुण दिन पर दिन वड्डा हुंदा जा रहा है, असलियत तो ए जाणू नहीं। असलियत की है? आप कहंदे ने इतना क ना जाने जे दिन दिन औध घटत है। इसनू ए पता नहीं कि मेरा बच्चा वड्डा नहीं बल्कि असलियत ए छोटा हो रहा है। ओ किवें? भला जे इस बच्चे दी उम्र लिखी है 5 साल, अज ए 4 साल दा हो गया है, बाकी तां 1 साल रह गया, 1 साल बाकी रह गया, 4 बीत गए। भगत जी कहंदे ने बस ऐसे भुलेखे विच असी पए होए हाँ, सारा संसार पिया होया है, सच नूं छड़ के परमेश्वर नूं छड़ के असी झूठी दुनिया दे मगर लग के इनू सच्चा करके मन बैठे हाँ। हजूर भगत कबीर

ऐसे भी मनुख आए पर चले गए। जुगां जुगांतरां तो मैं वेखदा आ रहा हां जेड़े एदे मालक बनदे माण अहंकार विच मत्ते होए अपने आप नूं खुद मुख्तियार दसदे सन। मैं तेरे कोलों पुछदा ओ किथे चले गए। अखीरलियां पंक्तियां विच एक ख्याल पेश कीता है।

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रचना बांझी रखी जाए, पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है। ये आम जिन्हें सजना जा भैणा नू ताल सुर दी समझ ना होए ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा होंदा है जिदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होएगी जे भैणा जा वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज़ नाल बोलन, ते नहीं तो प्यार नाल सरवण करना इस शब्द के विचों बहुत कुछ मिलना है।

इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण गाय ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

0: रहे जल बिन कुंभ ना हो। ज्ञान का बतावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो। ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: पापा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है।
2: आसरा उसका आधार था। मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं थोड़े को हजारों यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी दी छपड़ी आदि कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उठे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हाँ बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिल च तांगे।
4: कितनी दूर है गोइंदवाल।
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानिए सो सिर कपल उतार। जो सिर साई नानिए सो सिर की देताए उन्हें बैठ जलाए बालन संदे थाए बालन संदे थाए।
5: ओ साहब जी की गल है पैना तुसी ने गया दिता।
4: असी किस तरह जानते सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी।
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है पर असी साडे कोल ना तिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: ओ चलिए भैने मैं कोई कम कमाइया नहीं तो नहीं करता। मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडी लोड़ा।
5: मेरिया लोड़ा। मेरिया लोड़ा तो खुदावन पूरिया करता है तो हो भी चाहिए देखिए जो कुछ मैं लोग दे जाते हैं जाके गुरु के दरबार चढ़ा दिना। दिन वेले बेड़ी चढ़ाना तो राती लंगर चो ढिड भर के बाहर थे दसो जाना। मैं उगन हारा कोगन पल्ले नहीं।
4: तन हो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना। तन तो गुरु महाराज है जरा सब अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है। और दर से जाओगे तो उन्होंने कहना जिन्हें सानू यह सागर पार कराया उस औगन हारे इस पाव सागर तो पार उतारो।

साहिब जादे सूबे दे सिपाहियां नाल ठंडे बुर्ज विच माता जी पास परत आए। माता गुजरी जी पोतियां कोलों इस तरह हाल पुछदे हैं।

0: जित्ता जित के कायम सिख राज कीता, चंडा केसरी लाहौर चुला दिता। जी दी बात ने बै अफगान पौदे, नौ जग दे विच चमका।
1: गुजरा वाले दी धरती 1791 दा पागा परिया दिन,
2: सरदार गुरदयाल सिंह दे घर माता धर्म कौर दी कुखों जन्मिया सरदार हरी सिंह नलुआ।
1: 7 साल दी उमर विच ही पिता दा साया सिरों उठ गया। नानकियां दी निगरानी विच हरी सिंह ने शस्त्र विद्या ते कोल सवारी विच निपुणता हासिल कीती। कुछ सालां विच ही चंगा योद्धा बन गया।
2: शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने एक दिन हरी सिंह नलुए दी वीरता दे करतब देखे ता अपनी फौज विच भर्ती कर लिया।
1: दिना विच ही तरक्की कर हरी सिंह शेर दिल रेजिमेंट दा सरदार बन गया। शेरे पंजाब दे जरनैल, खालसा राज दे थम जरनैल हरी सिंह नलुए दिया गल्ला कर इंज होन लगिया।

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद्दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरी सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसन लगी।
1: कई हजार मुल्किया कट्ठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया,

0: 28 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघां ने पठाणा नूं जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारां पिड़ियां,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथां ते लोथां चढ़ गईयां। गुरु दे सिंघां ने ऐसे हद दिखाए कि गाजियां दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपां दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाड़ पै गया।
1: हुण महासिंह अग्गे तीन काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पाड़ पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघां दे रोकदिया रोकदिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल किले विचों निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका पिशौर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पहुंचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठ्ठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघां नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

नगाड़े ते चोट लगी, खंडे तलवारा ते बर्छे लिशके, केसरी निशान चूले, कोड़िया दे पौड़ा नाल, पहाड़िया गूंज उठिया। दस कु हजार सिंघा ने जमरौद वालू कूच कर दिता। सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 3 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने सिख फौजां समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारां बरछियां विच्चों मौत दे चंगियारे निकले, लोथां नूं लिताड़ दे सिंघां दे घोड़े अगे वधण लगे, मनुखी सिर मतीरियां वांग पैरां विच रुलण लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई। सरदार हरि सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नूं इउं टकरे।

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंच दिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तोला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आखिया,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार भाई लैणे दा भी, क्योंकि पता सी कि आज जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे होए, बिना परीक्षा लिते होए, आ किवें पता लगे कि इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मगर मगर संगतां, मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ घरां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां नूं। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां नूं। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरां ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, ओ सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नूं छड़ गए। सोने दिया मोरां चुक के घरां नूं चले गए। साहब जी फिर खोला जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नूं, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात झोलियां विच भर के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे भाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही झोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो झोलियां भर के घरां नूं चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठा लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नूं खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावां, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने भाई लैणे नूं कोल सदिया, अपने हिरदे नाल ला के
सिपाही लैने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तां मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हन और की कहिंदे हन।

ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीता। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानू कलयुग जीवां नू उपदेश देंदे होए एक गल समझांदे, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नू भी माड़ा आखे, ओ ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखदे। इधर पटबाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असी अपने आप नू चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे ने हम अवगुण भरे एक गुण नाई। हे मेरी पातशाह, मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा हां। हम अवगुण भरे

0: माया दे मोह विच पै के परमा विच मैं भुलिया फिरदा हां।
1: माया मोह परम पै पूले सुतदारा सो प्रीत लगाई।
0: सुत कहंदे ने पुत्र, दारा कहंदे ने इस्त्री। हे मेरे मालक, मैं तेरे नालों प्रीत तोड़ के तेरे नालों प्यार छड़ के मैं अपना प्यार अपने पुत्र तियां नाल ते घर वालियां नाल लाया हुए। फिर कहंदे ने

कंचन नारी में जियो लोभत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जरा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इन्हां विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू भुलाया होया है।

हे मेरे राम, ए साडे नीवे करम, मंदे पाग मैड़े करम, तू सानू बख्श लै मेरे राम, ए नी

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श, तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं है।

हे माधो, माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे, सत्संग तुम ध्यान देना। हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करन वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करन वाले। किवें चंगे हो? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। नीको ठाकर दे सामने नाल चंगा तू जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जाना है। हम ऐसे तू ऐसा आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथा है, बाणी बड़ी अथा है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे कते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुरु ख्याल देंदे हुए कह रहे ने

तुम समसर नहीं दयाल मोहे समसर पापी। भगत कबीर जी कहते हैं हे मेरे माधो असी के हो जाए ते आप के हो जाए। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नहीं दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा, तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है कृपालु नहीं है। मोहे समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं मेरे वर्गा पापी कोई नहीं ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो, मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी है, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकता है, भगत ही कह सकता है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा की याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए, गोविंद हम ऐसे अपराधी, गोविंद हम

एक खिन लेना हर को नाम गोविंद, हम ऐसे अपराधी। कैसा अपराध है, रात पैंदी है सौ जाने हैं, दिन चढ़ दे उठ के कमा कारण तुर पैने हैं, ते परमात्मा दा नाम कदो जपांगे। रात जो सोवे दिन करे काम, एक खिन लेना हर को नाम, एक खिन मात्र भी तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, तेरे अंदर गुण केड़ा हो।

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया है, कहिंदे ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता है, ते नाम मिलता कितों है अख्या जपन वालियां की संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि ए गुरु दी शरण विचों मिल सकदा है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदियां ने घड़े नू, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसे तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।